0: तो उस वक्त ये योग बनते हैं कि जो भी आपने कार्य अपने हाथ में जॉब से रिलेटेड लिया है उसके जो परिणाम हैं वो अच्छे मिलते हैं, वो पूर्ण होने के योग बनते हैं। परंतु उस वक्त जो परिवार है उसके साथ हमें अपने संबंध जरूर अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम अधिक समय अपना उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगाएं और परिवार पे ध्यान ना दे पाएं। तो उस वक्त जो समय है परिवार के साथ जो संबंध हैं ये जरूर अच्छे रखने चाहिए। अगर बात करते हैं मई महीने की, तो मई महीने में शनि के कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो कि चंद्र को प्रभावित करेंगे, मन बेचैन रह सकता है। तो उस वक्त हमें धैर्य से जो काम है ये जरूर लेना चाहिए, चाहे उस वक्त आपका जो जॉब है या बिजनेस है या वैवाहिक जीवन है या और भी आपकी लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं वो अच्छी जरूर रहेंगी, लेकिन फिर भी इस योग के कारण उस वक्त जो मन है कुछ अशांत जो है वो जरूर रह सकता है। अगर जून महीने की बात करते हैं तो जून में स्वास्थ्य का जो ध्यान है ये जरूर रखें, और क्योंकि उस वक्त जो जॉब है उसमें भी कुछ ना कुछ उतराव चढ़ाव के जो योग है ये बनते हैं। कई बार ऐसा भी योग दर्शाते हैं कि इंसान उस वक्त सोचता है कि भाई मेरी जॉब अच्छी नहीं चल रही या मैं जॉब को चेंज कर दूं, तो ये जो समय है वो अच्छा नहीं रहेगा। और इसी तरह से अगर बात करते हैं जुलाई की, तो जुलाई का जो महीना है ये वैवाहिक जीवन के लिए जरूर अच्छा रहेगा, परंतु कई बार ऐसा देखा गया कि हमारी ये इच्छा रहती है कि हमारे जो जॉब में काम करने वाले हैं या हमारे फ्रेंड हैं या हमारे कुलीग्स जो भी हैं उनके साथ हमारे संबंध भी जरूर अच्छे रहें, लेकिन ये समय ऐसा है कि उस वक्त आपके जो संबंध हैं उनके साथ अच्छे ना रहने के जो योग हैं ये बनते हैं। कहीं ना कहीं उनसे किसी भी मैटर पर वाद विवाद हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं अगस्त का जो महीना है, तो इस समय जो जॉब है या बिजनेस है या स्टडी से रिलेटेड भी कोई मैटर है तो ये समय उनके लिए जरूर अच्छा रहेगा। और ऐसे ही सितंबर में अपने स्वास्थ्य का जो ध्यान है ये जरूर रखना चाहिए, क्योंकि उस वक्त कुछ ऐसे ही योग बन रहे हैं कि स्वास्थ्य अच्छा ना रहे, लेजीनेस रहे, या आप जॉब पर या बिजनेस पर जो ध्यान है ये पूरी तरह से जो केंद्रित है ये ना कर पाएं। और ऐसे ही अगर अक्टूबर और नवंबर की बात करता हूँ, तो जॉब में और बिजनेस में अच्छे जो योग हैं ये बनते हैं, लेकिन उस वक्त जो फैमिली के या घरेलू जो मैटर है वो कुछ अच्छा नहीं है, उसमें वाद विवाद होने से आपका जो स्वास्थ्य है ये ख़राब रह सकता है। तो मेरा तो यही कहना होगा कि जो ये अक्टूबर या नवंबर का समय रहेगा अपने क्रोध पर थोड़ा सा उस वक्त नियंत्रण रखना चाहिए, परिवार के साथ जो संबंध हैं वो अच्छे रखने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम उस वक्त ओवरथिंक करने लग जाएंगे परिवार के विषय में, जो भी झगड़ा या कोई भी कारण रहता है तो उसका स्वास्थ्य पर जो वो बुरा प्रभाव रहेगा। और अगर हम बात करते हैं दिसंबर में भी, तो उस वक्त भी जो योग हैं अच्छे ही बनते हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें या जॉब या बिजनेस के लिए, तो उस वक्त का जो ये योग इसी तरफ इशारा करते हैं कि ये साल कुछ अच्छा रहने वाला है।
1: जी जगजीत जी, आपसे और भी बातें करते हैं एक छोटे से प्यारे से भजन सुनने के बाद, और उससे पहले हम अपने लिसनर्स के साथ आपका नंबर शेयर करते हैं जो कि 02103901133।

0: भी वक्त हमारे प्रोग्राम में कहां बीत जाता है, जी जी से बातें करते करते पता ही नहीं चलता, और हर बार लगता है कि हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिसनर्स के जो सवाल हैं अपने इस प्रोग्राम में शामिल करें, मगर वक्त हमें एहसास करवाता है कि बाकी की बातें अगले प्रोग्राम में। तो जगजीत जी, आपका हमारे साथ हमेशा इस प्रोग्राम में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे पता है कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो बहुत इंतज़ार करते हैं आपका हर सप्ताह इस हमारे प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि उनको अपने हॉरोस्कोप्स के बारे में काफ़ी आपसे जानकारी मिलती है और आप काफ़ी जानकारी उनको देते भी हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि हमारे लिसनर्स का जो आने वाला वक्त है बहुत अच्छा निकले, और जो वक्त अभी उनकी ज़िंदगी में जा रहा है वो भी काफ़ी अच्छा जा रहा हो, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हो और इसी वादे के साथ कि हम अपने अगले प्रोग्राम में उनसे फिर से रूबरू होंगे उनके कुछ सवालों के जवाबों के साथ। तब तक के लिए अपना सब ख्याल रखिएगा, और जगजीत जी नमस्कार।
1: नमस्कार जी।